इस अंधार को मेटने के लिए गुरु नानक अवतार हो गया, जिसने किया सिदक बेड़ा पार हो गया। पाप गिरासी पृथ्वी तौल खड़ा कर,

पेट भर के रज के खाइया अखां दियां खखड़ियां वेख के निहाल होईयां। गुरु नानक दी नदर हो गई अख दी खखड़ी ते अंब ते अनार मर्दाना तोड़ तोड़ खाऊंगा। ऐसे अमृत फलां दा स्वाद लै रहा है

के बदले रिजक ना बन दे पंछी ते दरवेश जिन्ना तपका रब दा तिन्ना रिजक हमेश जो तेरी प्रारब्ध है वो तेनू मिली ही जाएगी पल्ले नहीं बनना इसी तरह बचन।

0: जीव जंतु कोई नहीं इसने छड़िया, सारे खा गया। हुण आदमियां नूं खाना शुरू कीता, जेड़ा स्थिति भुलिया पटकिया इधरों लंघ जांदा है। वड्डा कड़ाया तेल दा भर के रखिया होया, उहदे विच तल के ते खा जाना, ते इस दा नित कर्म है। मर्दाना काबू आ गया, हुण अग बाल के अग नूं तेज कीता, ते तेल जिले उबलन लगा ना, ते मर्दाने नूं चुक के कड़ाई विच सिटन ही लगा सी कि धन गुरु नानक पातशाह इधर कहन लगे, बालिया आ मर्दाना फिर पौजल विच फस गया। महाराज ये तुहाडे आखे भी तां नहीं ना लगदा, बचन भी तां नहीं मनदा ना। कहण लगे, भाई नाल आए दी लज हुंदी है, नाले सानू इहदे नाल बड़े काम हन। उचारण करो श्री
1: वाहिगुरु वाहिगुरु।
0: धन गुरु नानक पातशाह जी ने कृपा करके अंतर दृष्टि नाल उथे पहुंच गए, ते जां मर्दाने नूं तेल विच सुटन लगा ता तेल ठंडा शीत वर्गा हो गया। हैरान हो गया कौड़ा राक्षस, भाई अग बल रही है, लाटा भी निकल रही हन, पर इना विच गरमाई किधर गई है। तेल नूं हाथ लाया ता ठंडा बर्फ होया होया, ते मुड़ के वेखदा है ता फिर धन गुरु नानक पातशाह दे सोहणे दीदार हो रहे हैं। दीदार करदिया ही, दर्शन करदिया ही अंतःकरण शुद्ध हो गया। वो पिछला समा याद आ गया जदों श्राप होया सी, याद आ गया कि मैं राजा जनक जी दे पास रसोईया सा, ब्राह्मण सा, रसोई तैयार करदा सा, पर महापुरखां दा शपथ रिखियां दा भोजन सी, ते जदों भोजन बन गया ता मेरा मन ललचा गया, मैनू भुख ने सताया बड़ा, ते मैं उस भोजन नूं जूठा कर देता, खा लिया। जदों ओ भोजन खा के जूठा कर देता ता सपत ऋषि जदों छकन लगे, ता कहन लगे, भाई आज इस भोजन विच किसे ने झूठ वरताई है, पवित्रता नहीं नजर आ रही। जां पुछया ता ए चट मन गया, महाराज मैनू बड़ी भूख लगी सी, मैं इसलिए ए अवज्ञा कीती, ते राजा जनक ने शराप दिता सी, जाओ ए राक्षा महापुरखां दा भोजन झूठा कर दिता ई। ते चरना ते डिग पिया, महाराज तुहाडा बचन तां कदे खाली नहीं जा सकदा, पर हुण मैनू तारोगे कदों। आख्या तू निम्रता दे नाल बेनती कीती है, नाले तू हर महापुरख दी संतां महापुरखां दी सेवा करदा रहे, रसोई दी सेवा करदा रहे, जा तैनू आप निरंकार आप नारायण कलाधार गुरु नानक सच्चे पातशाह आउणगे कलयुग दे विच, उना दे हथी तेरा उधार होवेगा। पर आ शीशा नाल रखी अपने, इस विचों अपना मुख वेख लिया करी, जदों तैनू इदे विचों मनुखां वाला मुख नजर आवे ना, समझ लई के अज तेरे उधार होण दा, तेरी कल्याण होण दा दिन है। उचारण करो श्री
1: वाहिगुरु।
0: बड़िया बड़िया नू खांदा रहा, पर अज जदों गुरु नानक दा दीदार होया, ते वेखदा शीशे विचों अपना चेहरा, तां देवत्यां वर्गा चेहरा नजर आया। ओ सारी घटना जो सी ओ फिल्म वांगू अखां को लंघ गई, ते नेत्रां तो जल नहीं रुकदा, चरना ते डिग पिया। ओ मेरा दे साईं, बख्शिशां दे सागर।